0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: Let's 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
5: बंद करो ना ढक्कन.
6: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
8: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
2: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
1: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहाँ HBL.
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हायर कन नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
6: And sweep it clean. Kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma. Aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
0: And
7: toofan hai. Har jeet ki pehchan hai.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
5: बंद करो ना ढक्कन.
6: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
3: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
0: And
2: Phoenix लगा और भूल जा Phoenix लगा और भूल जा
0: And
3: Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
0: And
4: HBL Freedom Account जहां खाब वहां HBL
0: And
5: तूफान है
6: facebook.com/fm247365
7: Let's celebrate
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: किसने कहा था पैसे बचा.

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
5: बंद करो ना ढक्कन।
6: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खा वहां HBL
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स बेहतरीन कवरेज प्लस डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
3: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: किसने कहा था पैसे बचा।

0: 247-365.
1: FM 247-365.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फॉर्म, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: your location for maximum music.
1: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खा वहां HBL
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादेही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है अगर आपको अचानक तेज बुखार शदीद सरदर्द जिस्म और जोड़ों में दर्द मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें याद रखें एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है डेंगू से बचाव आपकी एहतियात आपकी हिफाजत
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
8: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं इन सर्विसेज में रिंगटोन्स ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स मिस्ड कॉल अलर्ट इंटरनेट बंडल्स गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है जिसके लिए अमूमन OTP की तस्दीक या मखसूस USSD को डायल करना लाजिम होता है याद रखें PTA टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता अगर आपने ना तो OTP शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें जिनमें नाम
9: شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
10: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
11: FM 24/7/365

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
2: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 247365

0: listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs that's often easy listening to for the work.
0: Number one music station. FM 100. 100. 100.
3: Karachi, Lahore.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
5: FM 100's time check. It's 12 noon.
6: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
7: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
8: बंद करो ना ढक्कन।
9: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।

0: your location for maximum music.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।

0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महरारा देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: This program is brought to you by
2: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
4: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद्दे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। This program is brought to you by
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्वीन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 247 365 Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: This program is brought to you by
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: Sweep Be Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे, होशियार रहें, मोहतात रहें, अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात नशियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: Across the nation,
4: this is FM 100. FM 100.
5: HBO Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
8: बंद करो ना ढक्कन।
9: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, फास्ट डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBO Freedom account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBO Freedom account, jahan khwab, wahan HBO.
3: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, फास्ट डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
5: एंड स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
7: हमने अपने आप को से 3 बार मौत देखा।
8: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
9: फिर उन्होंने साड़ियों वीडियो बनाया, सानू मारिया, सब छुटिया।
6: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
10: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
6: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्भाव के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कोनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
0: FM 100
12: is facebook.com/FM247365. FM247365.

0: 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
5: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
6: Sweep Be Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur apne toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL. And

0: उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: नाजरीन ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू
4: बंद करो ना ढक्कन
5: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
2: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
6: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस 50 से ज्यादा प्लान बेहतरीन कवरेज फास्ट डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
7: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBO Freedom account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBO branch. HBO Freedom account, jahan khwab wahan HBO.
1: No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT Technology Food Expiry Notification के साथ साथ आपको दे Mobile App से Complete Control. No Frost, No Worries.
0: HBO Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त Checkbook, मुफ्त Online Banking और बेहतरीन Mobile App की सहूलत के साथ HBO Freedom Account, जहां खा वहां HBO.
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, फास्ट डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
1: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja.
0: And
2: Sweep Be Clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
6: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी परसेंट इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
7: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: कल नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: खालिस अज्जा भरोसे मन शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा
2: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
4: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज प्लस डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है अब जंग मैदाने जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है वो ढूंढता है कमजोर लम्हे बेरोजगार नौजवान जरूरतमंद खानदान फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब बड़ी नौकरी तेज दौलत बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं जिनसे बदमनी खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है आपकी तस्वीरें पहचान फोन सब कुछ खतरे में डाल देता है तो याद रखिए किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए कोई मशकूक चीज कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए क्योंकि हर लफ्ज हर क्लिक हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा फैसला आपके हाथ में है
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
6: इत्थे हमला दे होने

0: EFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज प्लस डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।

0: This program is brought to you by Tufaan Hai.
1: परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेनवा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेनवा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
4: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केटप्लेस. 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, प्लस डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: This program is brought to you by Tufaan Hai.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
6: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हूँ।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
6: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
5: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
5: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
9: FM 24/7 365

0: This program was brought to you by Tufaan Hai Har Jeet Ki Pehchaan Hai FM 100's Time Check. It's 8 PM.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: 100 FM.
2: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
0: This program is brought to you by
3: Hire Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: Manshiyat, ek lamhe ki galti, puri zindagi ki tabahi. Ice, heroin, chers, ya kisi bhi kisam ki manshiyat, ye waqti khushi nahi, mustaqil aziyat hai. ये जिस्म को कमजोर करती हैं, ज़हन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
4: Higher का नया No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
0: Like us on facebook.com/FM247365
5: FM247365.
0: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے.

0: This program is brought to you by
1: Hire Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं. जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं. हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: Us on facebook.com/FM247365.

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना।
1: 100 FM शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी JazzCash ऐप से Jazz V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए JazzCash है ना।
2: This program is brought to you by
3: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
4: Like us on Facebook.com/FM247365
5: FM 247365

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
2: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और
0: से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है. ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड डायल करें. जैस सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
6: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
5: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए. याद रखिए, अगर आपके जहर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया

0: This program was brought to you by
1: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
0: FM 100's Time Check. It's 10 PM.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: 100 FM.
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
0: FM 24/7 365 FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझमें क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे।

वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है। वक्त मिला तो सोचेंगे क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स पर एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
3: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोर्ट इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत।

0: स्टेशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकें। आइए इस खतरे के खिलाफ मुख्तलिफ नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान AMF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 24/7 365
3: back to back only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 fm247365

दिल धड़कने की एक कहानी है। आसमां से उधर, बुलंदी से नीचे गिरता हुआ ये पानी है। दिल धड़कने की एक कहानी है।

Assalamu alaikum, assalamu alaikum, Pakistan. Mera naam hai Nadeem Akhtar aur pyar se aap log mujhe kehte ho and is sunne habibi. स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक, और 3 बजे तक आज हल्ला गुल्ला नहीं करने का मूड है, पता नहीं क्यों। मतलब हल्ले गुल्ले न करने से मुराद ये है कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का मौसम हुआ है, कराची में बारिश हुई है, माशाल्लाह हर तरफ कीचड़ कीचड़ नजर आ रहा है, खड्डे पानी ये सब, इसमें रोमांटिक मूड कैसे हो सकता है इंसान का। लेकिन फिर भी हो जाता है, कीचड़ के बावजूद हो जाता है, पाँव में चप्पल पहनी हुई है और गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए हैं। अभी आएगी बारिश, हुई खिड़की में आएगी, भाई थोड़ा देख लूं यार, गुटका जियो। इस तरह का भी सीन चल रहा होता है। और मोबाइल पर लाइव बारिश देखू जानू। कितने यार कराची वाले, लव यू यार सबको, छोटी छोटी सी खुशियां हमारी और उनमें खुश हो जाते। खैर जी, माहौल बड़ा जबरदस्त है, मौसम बहुत बेहतर हो गया है, हालांकि बारिश कुछ जोरदार किस्म की नहीं हुई, कुछ देर के लिए हुई, लेकिन उठक पटक के साथ कराची का जो बैंड बजा हुआ है उसके साथ साथ हम कराची वाले खुश भी हो गए। क्या थोड़ी सी बारिश हो गई, क्या बात है, फौरन बारिश में जो है बारिश वाले गाने सुनने शुरू कर दिए। शुरू करना, आप पकौड़े बजाओ, आलू वाले पराठे, समोसे होते तो क्या बात थी, लेकिन अब रात बहुत हो गई है भाई, ये सीन तो नहीं हो सकते। लेकिन चाय का गरम गरम कप हो, खिड़की से आ रही हो ठंडी ठंडी सी हवा, जिसमें बारिश की खुशबू हो, हाय हाय हाय हाय, तो ये सावन की जो भीगी भीगी रातें होती है ना, बड़ी जबरदस्त होती है। खैर जी, आपको करेंगे वार्म अप, और वार्म अप थोड़े से आज मूड हो रहा है कुछ मेलो टाइप के, लेकिन हमारा मूड ऐसा ही रहेगा, यानी कि खूब हल्ला गुल्ले वाला मूड रहेगा, गाने जरा प्यारे से चलेंगे, यानी कि फुल वो धूम धड़ाका नहीं, मतलब मेलो से ट्रैक चलाएंगे। एंड आपका क्या ख्याल है इस बारे में जरूर बताइएगा। तो जनाब फीता काटते हैं इस वाले गाने से, एलो फड़ो।

वेलकम बैक करेंगे सावन की भीगी भीगी रातों में। हाय हाय, मैंने याद तेरी आती है, बात याद आती है भाई। ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। मैसेजेस कर रहे हैं आपके चॉइस पे, आपका नाम आपका मैसेज, उसको सेंड करेंगे आप 3636 पर। जो लोग कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, बड़ी मेहरबानी, सामने वाले को अंधा ना किया। अच्छा, कराची की हालत वैसे अजीब से, हर रोड जो है उखड़ा हुआ है, ट्रैफिक का कोई निजाम है नहीं यहाँ पर, सिग्नल लगे हुए हैं तो और भाई। अच्छा, उसके साथ साथ माशाल्लाह से तरक्की इतनी कर ली है बेरब्त कामों में कि रॉन्ग वे पर जब गाड़ी चला रहे हैं ना, माशाल्लाह से बड़ी बड़ी गाड़ियां, 40-40 50-50 लाख रुपए, करोड़ रुपए, तो सामने वालों को वो समझते हैं कि जो सामने से आ रहा है वो कोई कीड़ा मकौड़ा है। लाइट ऐसी आंखों में डालेंगे, कमाल है भाई, कमाल है भैया, खुदा के इंसान है आप भी, सामने वाले को भी इंसान समझो। लो बीम पर अपनी गाड़ी ड्राइव करें या बाइक, खैर मेरा ख्याल ये नाम नहीं मानेंगी, फिर भी हमारा जो फर्ज हम तो करेंगे। तो सुने हो, मैंने यादा तेरी आती यहाँ है सावन की भीगी रातों में, ब्यूटीफुल ट्रैक, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और इसके साथ साथ कोई ना मैं कोई सवाल करता हूँ ना, आज भी करूंगा प्यारे प्यारे मौसम के हवाले से। अगर कोई बात करना चाहे, कोई याद आपको हो मौसम के हवाले से, एक मुझे नहीं भूलती, मैं भी आपके साथ जिक्र करूंगा, एक नहीं बहुत सारी है वैसे, दो तीन ऐसे हैं, बारिश याद आए हाय, तो आपको बड़ा मजा आएगा। अपनी खूबसूरत सी यादों को याद कीजिए जिससे चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। ये दिल लेकिन बढ़िन है, मुझे वो याद आ रही है, लतीफ भाई बेचर क्या दर्ज यार बाबू, और लड़की अभी बैठ गई, हमारे मोहब्बत बिछड़ गई, ये चीज नहीं होगी। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई एक दफा लोग, कई साल पुरानी बात है, ऑलमोस्ट यू कैन से 10 साल से ज्यादा हो गया साहब, हम लोग यहाँ से कहाँ है, हॉक्स बे, और लाहौर से पिशावर से हमारे एक रिश्तेदार आए हुए थे, सबके साथ मिलकर हम लोग पिकनिक मनाने चले गए। और जैसे ही समंदर में हड में पहुंचे हैं जैसे ही, तो शदीद बारिश स्टार्ट, और सामने समंदर, आए हाय, मैं तो दास नहीं सकता, वो दिन भूल नहीं सकते हम लोग, और जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे वो भी नहीं भूल सकते। बहुत इंजॉय किया, इतना हसीन मतलब वो मौसम था कि समंदर का किनारा और सामने से लहरें आ रही हैं, ऊपर से बारिश बरस रही है, हाय हाय हाय। मतलब एक वाक्य मैंने आपको बता दी, इस तरह की बहुत प्यारी प्यारी सी यादें आप लोगों के साथ जुड़ी होंगी, तो वो भी आप बता सकते हैं कि हाथों में हाथ लिए चले यूं ही कारवां, कारवां कहां तक गया था। 3636 पर कर रहे हैं मैसेज, सवाल, यस सवाल फिर वहीं रह गया। आज का सवाल है जनरल नॉलेज से रिलेटेड, चले मोहब्बत के बारे में ही कर लेते हैं। बताएं दुनिया का वो कौन सा शहर है जिसको मोहब्बत का शहर कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ लव। अब सिटी ऑफ लव क्यों कहा जाता है उसको, इसके बारे में बड़ी मजेदार किस्म की बातें हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। दुनिया में वो कौन सा शहर है जिसको मोहब्बत का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लव कहा जाता है। वैसे तो ज्यादातर चक्कर यहां चल रहे होते पाकिस्तान, मोबाइल पर सेंड टू ऑल वाला सीन, आई लव यू सेंड टू ऑल। लेकिन खैर, एक ऐसा शहर है इस दुनिया में जो कि इस नाम से मशहूर है। तो चलते हैं जनाब आपके मैसेज की जान है। तो सबसे पहले फीता किसने काटा, किसने काटा, हाय हाय, हमारी छोटी छुटकी बहना सबा गुल कह रही, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप, लाला संजीदा भी मश्क महनूर, और सब सुनने वालों को उन्होंने प्यार भरा सलाम कहा। ये है ना बात, ऐसा आना चाहिए मैसेज। अक्सा आ गई हैं, अक्सा कैसी है, सलाम, क्या हाल है आपकी, तबीयत कैसी है आपकी, आवाज सुनकर दिल को सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अल्लाह ताला सदा मुस्कुराती रहे, हमारी दुआ आपके लिए, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और किसी का मोहताज ना करे, यही दुआ मेरी आपके लिए भी है। तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है, और हमारी प्यारी सी शहजादी नूर भी आ गई,
یعنی یہ سلام کیسے ہیں اور والد صاحب کیسے ہیں؟ تمام سننے والوں کو سنجو کو سلام کہیں گے. وعلیکم السلام. والد صاحب ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک. ابھی ان کا ایک اور میسج آنا ہے زرین نور کا, مجھے پتا ہے وہ کون سا ہوگا. اور ہاں یار ایک اور بات بھائی, آج آپ لوگوں نے پلیز کوئی فرمائش نہیں کرنی یار, پلیز فرمائش. ڈیڈیکیشن چلے گی. جب آپ نے کسی کو گانا ڈیڈیکیٹ کرنا ہے تو آپ بولیں گے ندیم بھائی نیکسٹ گانا ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیں بھائی, یہ سین چلے گا. بڑی مشکل یار, آدھا گھنٹہ لگایا یار, پونے گھنٹہ. گانا بھی اچھے ہوں گے, بس وہی چلاؤں گا آج. پہلے بتا رہا ہوں جتنی مرضی آپ بات کر لو بھائی, نہیں جو گانا ہے میں ڈیڈیکیٹ کر دوں گا. اور ہمارے پیارے سے شہزادے بھائی یوسف بھائی پاپوش سے آگے ہیں تمام سننے والوں کو اور ایفم منٹ کی تمام فیملی کو انہوں نے سلام کیا. خصوصی طور پر ہماری پیاری سی آنٹی چاچی اروسا گلبانو, تمام ڈاکٹرز اور عمران بھائی, خطاب لالا, غفران بھائی اور میرے والد کو انہوں نے سلام کیا. ہاں جی یوسف بھائی کہاں ہیں ابھی بھی؟ وہ ڈیڈو چل رہی ہے, میسج کر کے بتائیے گا ایک عدد. یا گھر پر ہیں؟ بارش ہوتی ہے تو بھابھی یاد آتی ہیں نہیں آتی ہیں بھائی, یہ بتائیے گا, ضرور بتائیے. اچھا ویسے بارش ہوتی ہے, موسم خوشگوار ہوتا ہے تو محبوب کیوں یاد آتا ہے یار؟ ابو کیوں نہیں یاد آتے؟ امی کیوں نہیں یاد آتی؟ سوچنے والی بات ہے, محبوب یاد آ رہا ہے بس. ٹیچر کو یاد کر لو بھائی, کسی دوست کو یاد کر لو. نہیں محبوب ضرور یاد آتا ہے زیادہ تر لوگوں کو, تو کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے یار؟ اہم ہی پوچھ رہا ہوں. ندیم بھائی ایف ایم ہنڈریڈ صحیح نہیں چل رہا بھائی, اس کی ٹانگ میں تکلیف ہے, آپ کی آواز خراب ہوتی جا رہی ہے. سبا بھی کہہ رہی ہیں بچہ ہو جائے گا صحیح یار, بارش ہو رہی ہے نا, تارے گیلی ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو آواز بہت آ رہی ہے. ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے, یعنی سمجھ رہی ہیں نا آپ. چلے جی ایک اور ٹریک کی جانب جا رہے ہیں اور یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے. یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے جناب. اچھا میں ٹریک ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں یوسف بھائی پاپوش سے. یوسف بھائی کی جانب سے ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے ہماری پیارے سے بھابھی یعنی مسز یوسف کو, اور اکثر کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. اور کس کس کے میسج آئے ہیں؟ سبا گل تو خیر ہے ہی, ہماری پیارے سی شہزادی بہرا, ان کو کریں گے. تو جناب آپ سب کے لیے بہت ہی پیارا سا گانا ہیلو پھڑو یار.

वेलकम बैक कहेंगे ये जीवन क्या है। मैं जान नजर कर दूं ब्यूटीफुल ट्रैक और मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एंजॉय करना है शो को फुल टाइम, समझ रहे हैं आप, फुल टाइम जज्बात ही नहीं होना किसी ने। हमारे युवा फ्रीदी भाई आगे खड़े जाने जगह या हबीबी आपको ये ना खो गुल गुल सबा गुल गुल सबा गुल लला ये गुल सबा गुल क्या मतलब है? मैं समझ रहा हूँ दिमाग से भी जा नहीं रहा गुल। खैर जी और मानूर को मुश्को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम, वालेकुम असलाम। अब आ गया गुल गुल और खैर जिगर हिना गुल को और सबा गुल को एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर दें ताकि जीबीएन खुश हो जाए। अच्छा उसको खुश करने के लिए आप इन दोनों को गाने डेडिकेट कर रहे हैं तो बस ठीक है। ये क्या बात हुई यार, आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश में आग नहीं लगाया करें आप प्लीज, लेकिन फिर भी हम आपके लिए गाना चला देंगे। आप अपनी पसंद का सॉन्ग संजू के नाम कर दीजिए, जरी नूर मेरी प्यारी सी बहना शहजादी बिल्कुल करेंगे। अच्छा अपनी पसंद का कर दूंगा ट्रैक, फिर आप पूछकर बताइएगा कि संजू को अच्छा लगा या नहीं लगा, पता चले वो कहीं ये नदीम ने कौन सा गाना डेडिकेट कर दिया मुझे। नाइस सॉन्ग नदीम भाई सबा गुल ने गा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात पर बढ़ते हैं फैसलाबाद की तरफ और फैसलाबाद पहुंचते ही मैसेज सामने आया है हमारी प्यारी सी बहन का नरेन तौसीफ कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई कैसे हैं जनाब, वेलकम टू द गुड शो, ढेरों दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन समातों के लिए। बारिश हो ही गई आखिरकार कराची में, मुबारकबाद कबूल फरमाइएगा। बारिश तो हो गई है बहना, लेकिन बारिश से हमारा दिल भी बहल गया, मगर खैर इस तरह तो होता है इस तरह के काम में, हम बुरी बुरी बातें नहीं करनी है, खड्डों की बातें नहीं करनी है, पानी जहां जमा वो बात नहीं करनी, कीचड़ की बात नहीं करनी, बस हमने प्यार और मोहब्बत की बात करनी है। नदीम भाई कुछ लोग दूसरों की नेकी खलूस और मोहब्बत की कदर करने की बजाय उसका जवाब बिरयानी में देते हैं यानी बुराई में देते हैं यार बेकदरी या नाशुक्री से देते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि अच्छाई कभी जाया नहीं जाती। अच्छा भाई जो शख्स दूसरों के साथ इखलास और भलाई करता है उसका अजर अल्लाह ताला के हाँ महफूज रहता है, इसलिए लोगों को के रवैयों से दिल को छोटा करने की बजाय अपनी अच्छाई और इखलाक को बरकरार रखना ही असल कामयाबी है। अपना आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल बिल्कुल इस मामले में 100% सही, 100% आपने सही फरमाया है। बस अपना इखलाक अगर हमने दुरुस्त कर लिया आए आए, तो क्या बात है, आपने बातें इतनी अच्छी लिख दी है मैं इस पर क्या चर्चा करूं। अब भाई हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौजीब ने मोहब्बत का शहर यानी कि सिटी ऑफ लव का जवाब दे दिया है। वाह वाह वाह वाह भाई, ये भी बता दो बहन कौन से मुल्क में है ये शहर। मेरी प्यारी बहन संजीदा को सॉन्ग डेडिकेट कीजिएगा। लो जी दो गाने हो गए, अच्छा सा सॉन्ग अपनी प्यारी सी क्यू शीट से। हाय अल्लाह जी ए हुई ना गल, कहीं आज लाइव आ जाए। चले आज हम कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ बारिश, हाँ स्टूडियो में तो नहीं हो रही और आगे बढ़ते हैं जनाब और हमारे प्यारे से भैया आ गए। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है आपकी? मिस्टर नुमान फ्रॉम बल्दिया, आजकल बल्दिया क्यों नहीं लिख रहे नदीम भाई? ये बारिश और पकौड़ों का आपस में क्या कनेक्शन है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। बड़ा जबरदस्त बारिश का, पकौड़ों का, चाय का, कॉफी का, आलू वाले पराठों का, नमक बारों का, वाह वाह वाह वाह वाह, इन तमाम चीजों का ताल्लुक है। नदीम भाई अगर किसी ने गाड़ी में 3 लाख की लाइट लगाई है तो उसका हक बनता है कि वो सामने वाले को अंधा कर दे। हाय हाय, उसका हक बनता है, सही है। अरे यार ये नौमान बुरा नहीं मनाना, हम लोग यही सोचने लगे हैं। बस भाई 2 करोड़ की गाड़ी है, 3 लाख की लाइटें, तो सामने वाले को तो अंधा करना बनता है भाई। भाई तुम 50,000 की मोटरसाइकिल लेकर मेरी गाड़ी के सामने आए कैसे, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है भाई, यानी के समझ रहे ना।
लाला आप भी चर्चा डालें इस पर। ओहो कृपान मेहमान भाई आ गया आज तो यार, नींद नहीं आ रही, कल तो बड़ी नींद आ रही थी हैं। खैर जी स्वीट से सुनियो को इस मासूम से गरीब से बच्चे का सलाम कबूल। सुनियो अम्मी ने बना कर दिया पकोड़े इस मौसम में, आए कभी बेगम के हाथ के भी खा ले, कब तक अम्मी के हाथ के खाएगा मेरा भाई, बस कर दे। अम्मी अम्मी लगा रखा भाई, बड़ा हो गया तू भैया। बेगम को आना चाहिए इरफान मेमन, बस बहुत हो गया। अच्छा इस बारे में ना इरफान में मैंने आपको बोला था पिछले दो शो से, मैं बोल रहा था कि मैं आज के शो में आपको बताऊंगा, क्योंकि परसों तो आप आए नहीं थे, तो हमारी सारी बहनें आई थी, मीमन पेहली से। और आपको एक और बात बताऊं, हमारी टीचर भी आई थी, बहुत दिनों के बाद उन्होंने मुझे सबक दिया मीमनी का। तो खैर और कल फिर आप आए, तो कल फिर शो जो था ना वो था गजल टाइम, तो उसमें हम मस्ती नहीं कर सकते जिसे अभी कर रहे हैं। तो खैर ये अम्मी ने पकौड़े बना के दे दिए, गाने की फरमाइश होगी तमाम कजिन को और फैमिली को, अयूब लाला को, मुश को, समी भाई को, आंटी को डेडिकेट कर दीजिएगा। सुने ओ, अरे हाँ मुझे आंटी से याद आया, मेरी प्यारी सी आंटी आप तो पक्का पक्का सुन रही हैं, आई लव यू आंटी, लव यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं आपका फोन अटेंड नहीं कर सका, उसकी वजह ये थी मैं मोटर बाइक पर था आंटी, लिहाजा डांटिएगा नहीं, मैं आपको कॉल करूंगा शो के बाद। आज मेरी एक कजन दुआ मेमन की बर्थडे है, हाय अल्लाह जी, सब मुफ्ता तोड़ने गई हैं और शो भी आपका सुन रही है। अरे वाह भाई वाह भाई, तो आप मुफ्ता तोड़ने नहीं गए हैं, तो अपनी जो कजन है ये प्यारी सी हमारी बहन दुआ मेमन जो है उसको कोई तोहफा वोफा देना चाहिए आपको। सॉन्ग अच्छा प्ले किया, फर्स्ट सॉन्ग सुनो, हाय हाय अभी भी गाना जो चलेगा वो भी बहुत आपको अच्छा लगेगा। और सुनियो आपकी वॉइस बारिश की तरह आ रही है और जा रही है, इसीलिए तारों पर जो है वो पानी गिर रहा है, तो वो बारिश की तरह आएगी न जाएगी, कबूतर की तरह फड़फड़ाएगी। बाइक पर मेरे कजिन महानूर मेमन के साथ और बाइक स्लिप हो गई थी, एक याद है। दोनों को जख्म आए थे। भाई तुम बाइक क्यों चलाते हो, रिक्शा चला लो यार, ये ज्यादा बेहतर है। गाड़ी लेने के लिए मना करते ना घर वाले, एक रिक्शा खरीद लिया, मतलब वो रिक्शा आप अपने कारोबार के लिए नहीं, बस कहीं जाना है तो रिक्शे में चले गए भाई। बाइक से तुम्हारे एक्सीडेंट हो जाते, अभी रिक्शे की तस्वीर भी भेजी है इसीलिए कह रहा हूँ। और उसमें लिखा हुआ है, रिक्शे के पीछे लिखा है शेर, तुम्हारे बिना जिंदगी में है सन्नाटा, तुम ही मेरी चाय, तुम ही मेरा पराठा। बस ये आपने रिक्शा खरीदना है और रिक्शे में सफर करना है आपने, आपको फायदा भी है। देखो ऐसा ही बनाइएगा रिक्शा जैसी तस्वीर भेजी थी आपने, यानी ये समझ में ना। हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी आ गए हैं सलाम के बाद, अपना वो उनका जो स्टाइल है उस सलाम के बाद उन्होंने सॉन्ग की रिक्वेस्ट भी की है समी को, नसीम कुरैशी साहब, अयूब आफरीदी, खिताबुल्लाला इमरान रियाज और मेरे वाले साहब को उन्होंने सलाम कहा है। नई ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब एबीरिया का याची है, क्यों ना इसी बात पर लेके जाया जाए आपको एक अदद गाने की जानेब। ये गाने की फरमाइश से मुराद ये है कि सिंगर की फरमाइश जो है वो की गई थी, यानी कि सज्जाद अली हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब ने, उसके साथ ही साथ हमारे इरफान मेमन साहब ने अपने तमाम कजन्स को ये डेडिकेट करना चाहते हैं। दुआ को तो हम खैर वो एक स्पेशल गाना डेडिकेट करेंगे उनकी बर्थडे पे, हैं जी, मगर अभी फिलहाल तमाम कजन्स को हम ये ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ इरफान मेमन को कर रहे हैं, उसके साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, उसके साथ हमारी प्यारी सी बहना सायरा मेमन और सलीम मेमन दोनों, ठीक है जी। तो ये गाना सुनिए आप, मजा आएगा आपको बहुत। अरे बाहर बारिश हल्की फुल्की, मतलब नहीं कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, लेकिन एक दफा जो होना था वो हो चुकी और मौसम अच्छा है, तो जरा खिड़की के किवाड़ खोल दीजिए और हवा को अंदर आने दीजिए, सुकून के साथ बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, चाय का कप अगर पास है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आंखें बंद करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराइए, कुछ ख्यालात को इधर उधर घुमाइए और सुनिए।

Welcome back. बारिश हो के मौसम में तुम याद बहुत आते हो, तुम याद बहुत आते हो। आज सवाल ये पूछा है मैंने आपसे कि किस शहर

हाय, मिलने की और बिछड़ने की पहली बारिश मुबारक। आपकी आवाज में सॉन्ग, मेरी आवाज में सॉन्ग। हाय लजी नागरिना, चलिए ठीक है, आपको सुनाएंगे। जिंदगी हमेशा मेरी आवाज सुनने, मेरी आवाज में बेसुरा गाना सुनने की ख्वाहिशमंद रहती है, तो जिंदगी आपको जरूर डेडिकेट करेंगे। मौसम के हवाले से कुछ कहेंगी आप तो बता दीजिएगा जिंदगी। सलाम नदीम भाई, कैसे हैं आप? लारा को, संजीदा आप ही को और सब सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। हिन्ना गुल हिन्ना हिन्ना हिन्ना हिन्ना हिन्ना और वाकई याद बहुत आती है आपकी आवाज में। सॉन्ग हो सके तो सुना दीजिएगा जिंदगी का, दोबारा मैसेज आया। और वालेकुम अस्सलाम गुल ने कहा है, हिन्ना गुल ने। और हमारे सलीम मेमन का मैसेज अभी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आपके दूसरे मैसेजेस की जानिब जाएंगे। भूत भी आजकल परेशान है कि लोग रात भर मोबाइल चलाते हैं, डरने का मौका ही नहीं मिलता, डराने का मौका ही नहीं मिलता। वैसे बात तो सही है, क्या ख्याल है इस बारे में आपका? ये आप खुद ही बता सकते हैं, आप किस किस को डराने जाते हैं, भले से बताइए। सलीम मेमन भाई हमारे, किसी हो भाई? हाँ वैसे भूत भूत कहाँ है आजकल, कोई इस तरह का कोई वाकया हो ही नहीं रहा भाई आजकल। किसी को जितने भी सुन रहे हैं, जिनको बगैर खड़खड़ाहट के मेरी आवाज आ रही है, वो जरा ये बताएं कि मतलब कोई 5-6 महीने या साल या 1.5 साल पुराना कोई वाकया इस तरह का है कि भूत छूत देखा हो, यानी कि समझ रहे हैं ना, जरा बताइएगा। जिगर पाकिस्तान तो लाहौर है। लाला क्या बात की है आपने, वाह वाह वाह वाह वाह भाई, बहुत आला बहुत आला। अच्छा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, जवाब दिया नौरीन बहना ने दोबारा। फैसलाबाद में बहुत शदीद बारिश हो रही है, अभी पकौड़े खा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल खा सकते हैं, बनाइए पकौड़े और एक पकौड़ा भाई के नाम का भी, यानी कि समझ रही है ना। अच्छा पकौड़े जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल से लोग बनाते हैं, घरों में मुख्तलिफ तरीके से बनते हैं, बाजार में मुख्तलिफ तरीके। बाजार के पकौड़े तो मुझे पसंद नहीं है भाई, साफ साफ बात है, ठीक है भाई। और मेरे घर में जो पकौड़े बनते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये कौन कौन सी चीजें उसमें मिलाई जाती हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मिलाई जाती है मेरे कहने पर, मतलब जैसे प्याज हो गया, हरी मिर्च हो गई, धनिया हो गया, सूखा धनिया और गीला धनिया दोनों। ये तमाम चीजें तो होती हैं, लेकिन इसमें ऐड ऑन करवाता हूं मैं अनारदाना, अनारदाना उसमें ऐड ऑन करवाता हूं पकौड़ों में। और फिर पुदीने की चटनी, आय हाय, और उसका पुदीने की चटनी का रायता यानी कि दही के साथ जब बनता है, और पुदीने की चटनी में भी अनारदाना थोड़ा सा शामिल हो, आय हाय हाय हाय, मुंह में पानी आ जा रहा है, आय हाय क्या करो भाई। अच्छा जनाब, और मैसेज तो बहुत सारे हैं यार, इसमें तो फिर टाइम और आगे चला जाएगा, एक गाने की जानिब जाना है मैंने तो। हमारे इरफान मेहमान, अलीमुद्दीन साहब, मिर्जा शुजा साहब गुजर खातों, और दुबई से हमारी फरहीन और नुमान साहब, आप सब लोग इंतजार में। अमीन भाई हमारा शहजादा, बहुत सारे मैसेजेस हैं भाई, वो सारे हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं जनाब जिस ट्रैक की जानिब, ये ट्रैक जो है हम डेडिकेट कर रहे हैं संजू को, और किस किस की जानिब से? एक तो जरीन नूर ने संजू को ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा, और दूसरा हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ ने डेडिकेट करने के लिए कहा। तो संजू आपके लिए गाना एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे हाय मैं लिखूं। अच्छा ये कहना अलमदा जी मलिफ जा आ जा आ जा, ये वो वाला आ है, ये वो वाला आ नहीं है कि जब किसी को एक चमाट पड़ा हो तो बोले आ लिखूं तो आ जाए। एनीवे और जी आपके मीसी जी की जानिब जाना था और मिर्जा साहब आ गए। मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं भाई? मिर्जा साहब थोड़ा मैसेज की तो शुरू हुए है। फ्रॉम गुजर खान अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब अर्ज है तस्लीमात। नदीम भाई पूरे पंजाब में शरीर बारिशों का सिलसिला जारी है, मैंने दसो कराची दी की सिचुएशन है, कराची में कोई भाई हुई है कोई तकरीबन 15-20 मिनट बारिश और सिचुएशन ऐसी है कि बस बता नहीं सकते आपको। पंजाब तो पंजाब है ना जनाब, तो जैसे हमारे अयूब लाला ने कहा तो पाकिस्तान तो पंजाब है, असी मतरेप रहा थोड़े। नदीम भाई सच मुच्ची में पानी आ गया है। कभी पालक सूखा धनिया अनारदाना और लंबे लंबे प्याज वाले पकौड़े ट्राई करें। हाय हाय हाय कितने भाई जान कितने। पालक के साथ उसका एक अलग मजा है, मैं सिर्फ पकौड़े की बात कर रहा हूँ भाई। पकौड़े के लवाजमात जो फिर डिफरेंट है, पकौड़े में जो है वो बैंगन भी तला जाता है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, वो बेसन में बेसिकली पकौड़े में कह रहा हूँ, बेसन में बैंगन भी तला जाता है, पालक भी तली जाती है, यानी कि ना पकौड़े। और जनाब हम बढ़ते हैं। नौरीन कह रही हैं पालक चिकन पकौड़ा बना रही है, पालक चिकन पकौड़ा बना रही है मेरी बहू रानी। अच्छा मेरी बहू रानी बाद में लिखा, मैं समझा पालक ही बना रही है। पालक चिकन पकौड़ा बना रही है मेरी बहू रानी, बहुत ही मजेदार क्रिस्पी पकौड़े बना दी है। भाई जीती रहे, मुस्कुराती रहे, शाद रहे, आबाद रहे, हमारी ढेरों दुआएं। और हां जी दुबई वाले क्या कह रहे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम, कह रही आ जाए ना ऑनलाइन। अल्लाह जी आई एम ऑनलाइन का। अच्छा जी दुरुस्त जवाब दिया है इन्होंने, मोहब्बत के शहर यानी कि सिटी ऑफ लव। कभी गई हैं आप? अच्छा जी इस सॉन्ग का सिंगर कौन है? ये इश्क गाने का टाइटल है, मैं आ लिखूं तू आ जाए। ये गाने का टाइटल है फरहीन इश्क, और इसके जो सिंगर हैं वो हैं फहीम अब्दुल्ला। और भी आपको बहुत अच्छे अच्छे नए नए गाने सुनाऊंगा आपको, आप परेशान हो जाएंगी। हाँ भाई पाकिस्तान इतना आगे निकल गया भाई, क्या बात है। नवान कह रहे हैं नदीम भाई आज वादे को लेकर गया था, वालदा को लेकर गया था कीमोथेरेपी के लिए, सेकंड सेशन था आज, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अच्छा नुमान बहुत ख्याल रखना उनका, बहुत ख्याल रखना। कीमो जो है ना एक बहुत ही तकलीफ देह किस्म का प्रोसेस है, और हम देखकर हमें नहीं पता चलता कि इंसान को कितनी तकलीफ हो रही है, तो अम्मी का बहुत ख्याल रखना, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दिया भाई हमारे अलीमुद्दीन साहब ने। भाई कोई मसला नहीं है। इरफान भी मन क्या कह रहे हैं? थैंक्स सुनियो, कोई है नहीं जो याद आए, तो भाई कोई नहीं है ना, तो जो लाना चाह रहे हैं ना जिससे आपको याद, फिर वो भूलेगी नहीं। ये सारी बहनें सुन रही हैं इस वक्त इरफान मेमन, और आपके लिए स्पेशल बातें मैंने करनी है अभी। एक कप यहाँ भी पार्सल कर दे टी का जरीन नूर, और सलीम मेमन को सलाम कहा है उन्होंने, चुड़ैल देखी है वो भी एनी टाइम। चुड़ैल अभी तुम्हारे पास आई कहाँ है? भले चुड़ैल ले आओ शादी कर लो, ऑनलाइन आएगी सोने हो। मैं आ ली हूं तो आ जाए। और नदीम भाई आज मुंह धो के आए हैं,
लाए भाई जाए फिर। ये कौन है भाई? नौमान साहब कह रहे हैं नदीम भैया मुंह धोकर, मैं मुंह धोकर नहीं आया, आज तो बारिश हुई है नहा के आया हूँ भाई। और क्यों ना और मैसेज पढ़ते हैं, मैसेज ही पढ़ते हैं आपके। अच्छा जनाब सलाम भाई कैसे हैं आप लाला को? अच्छा ये तो हिना गुल का मैसेज हो गया था, जिंदगी का भी मैसेज हो गया था और भूत वाला मैसेज भी हो गया था, लाला का भी मैसेज हो गया था, अमीन का मैसेज पढ़ना था हमने। अमीन मेट्रोवेल से अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, शो VIP ऑसम बिंदास बोले तो चकास। स्वीट फैमिली को सलाम मेरी जानिब से, SG को डेडिकेट कर दीजिएगा एक ट्रैक, ये राशा वाशा नहीं होगा भाई, रहीम शाह का गाना, आज हमने पहले ही बता दिया था, आप देर से सुन रहे हैं मेरा ख्याल, आपने हमने पहले बोल दिया था भाई, जो भी ट्रैक होगा हम डेडिकेट कर देंगे आपकी जानिब से, हैं जी SG को। और गप्पार भाई कह रहे हैं नदीम भाई एक SMS भेज रहा हूँ आप दिल में पढ़ना। भेजो पहले लिखना उसके गफार भाई दिल में पढ़ना उसके बाद मैसेज लिखना क्योंकि मैं रवानी में पढ़ देता हूँ। अच्छा जी नदीम भाई मैंने अपने साथ क्या कह रही, इतनी खतरनाक बात लिख दी मुझे डरा रही हो, 1 साल होने वाला है इस बात को सबागुल कह रही है भाई, ये जिन भूतों वाली बातें आप खत्म कर दो, सवागल में मुझे डर लग रहा है, अब बस रहने दो। अच्छा जी नदीम भाई सिटी ऑफ लव जाने का मशवरा आप ऐसे दे रहे हैं जैसे वो शेखुपुरा के आसपास है, साहबजादा कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि बस आप पहुंच जाएंगे वहां, शेखुपुरा भी दूर है। थैंक्स सॉन्ग के लिए, ये तो संजू को बहुत पसंद है सरीन नूर, ये तो आपकी जानिब से था, अभी नौरीन की जानिब से हम एक और करेंगे गाना, यानी कि समझ नहीं है ना आप, संजू को एक और गाना डेडिकेट करेंगे नौरीन तौसीफ की जानिब से। लाला कह रहे हैं पाकिस्तान में मोहब्बत का शहर है। मैं नाम नहीं लूंगा लाला, और कह रहे पूरी दुनिया को पता है। अच्छा पाकिस्तान में मोहब्बत का शहर कौन सा है ये, चले ये भी सवाल है। वैसे तो मैंने सिटी ऑफ लव पूरी दुनिया में जो मशहूर है उसके तो बारे में तो खैर मैं पूछ ही रहा हूँ, मगर आप ये बताओ, यानी कि समझ रहे हैं ना। अच्छा यार एक गाना है और ये मैं गाना जो है ये नौरीन तौसीफ से डेडिकेट की जानिब से डेडिकेट करवा देता हूँ, और गाने की जानिब हम फौरन बढ़ रहे हैं, और ये ट्रैक जनाब नौरीन तौसीफ की जानिब से संजू के लिए। संजू पसंद नहीं आया ना तो मुझे बता देना है, लेकिन इसमें क्या गाना है यार,

जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर आता है जिसके आने से जिंदगी बहुत हसीन लगती है। उसको देखने से ही दिन अच्छा गुजर जाता है। उसकी मुस्कुराहट ऐसा लगता है पूरा जहान वाले। मेरी जिंदगी में

वेलकम बैक आ मिले हो यहीं आ मिले हो। ब्यूटीफुल ट्रैक शेगिल और समय ने ये ट्रैक गाया हुआ है और इस ट्रैक का टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, यू ही इसका टाइटल है और ये बेसिकली ओएसटी है यू ही ड्रामे का।

हबीबी मेरी प्यारी सी बहना आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सदा हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो। हमारे FM 100 के तमाम लिसनर्स की जानिब से और हमारी जानिब से आपको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद और पूरी मेवन फैमिली की जानिब से एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आपके लिए। एल्लो फड़ो हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो, आ गया गाना।

0: میری گل سونه تبه
1: वेलकम बैक। और आई होप कि आपको गाना सही पसंद आया होगा। और आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानेब। और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब के सवाल मैंने फ्लोट किया हुआ है। और सवाल ये है कि आप लोगों ने बताना है, क्या बताना है आप लोगों ने? आप लोगों ने ये बताना है जनाब कि सिटी ऑफ लव किस शहर को कहा जाता है, मोहब्बत का शहर किसको कहते हैं। हैप्पी बर्थडे दुआ मेवान। आप सबको कह रहे हैं, मालूम कह रही है बाबू बहुत वाली बातें मत करो, डर लगता है। मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, मेरी वाकई में बहनों मैं भी डर रहा था। सबाकुल ने ऐसी खतरनाक बात बताई कि मैं तो डर पड़ा। नदीम भाई आज के शो जबरदस्त है, सबाकुल पसंद मेरी बहन को, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अमीन का तो खैर मैसेज पढ़ लिया था। अमीन तुम्हारा गाना रहता है वो अभी हमने चलाना है, गाना चलाना है भाई। दुबई से भी सुन रहे हैं, गुज्जर खान से भी लोग सुन रहे हैं, फैसलाबाद से भी सुन रहे हैं, तो गाना सुनाना बनता था। अभी मुल्क से दूर एक लड़की बैठी हुई है और हमें सुन रही है, तो भाई फरहीन के लिए एक बहुत जबरदस्त सा ट्रैक है। फरहीन आप सुनेंगे या नहीं पहले मैसेज करके बताएं। एमी हम नहीं करेंगे, पता चले हम गाना ऐसे डेडिकेट कर दिए उन्हें तो पता ही नहीं है कि सुनते पे नहीं सुनते पे। और महानूर कह रहे हैं मैं एम अब्दुल्ला को सलाम। बाबू एम अब्दुल्ला खामोशी से सुनता है। एम अब्दुल्ला खामोशी से क्यों सुनता है जरा ये तो बताओ। खामोशी से तो तुम भी सुन रही हो, सभी लोग खामोशी से सुनते हैं। हम मुंह से थोड़ी सुनेंगे, कान से सुनेंगे, खामोशी होंगे। हाँ अंगूठे से वो टाइपिंग कर सकता है, यानी कि सारे ही ना। तो खैर एम अब्दुल्ला कैसे हो भाई, ठीक ठाक हो? ओके ठीक। नदी भाई मेरे रिश्ते के लिए मेरे घर वालों ने कोई पांच सही तरह तो लिख दिया करो, कसम से पांच जो है ना मिर्जा साहब तुसी जो पांच लिखा है ना वो ऐसा लग रहा है बांझ लिखा है। मेरे घर वालों ने मेरे रिश्ते के लिए कोई बांझ जगह ट्राई की। अच्छा यार पांच जगह ट्राई की लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। फिर एक लेडीज ने मेरी वालदा को बताया कि एक मासी है रिश्ता करवाने वाली, उसके पास तीन चार रिश्ते मौजूद है। जब से घर वालों ने उससे बातचीत की अब उस मासी को रिश्ता नहीं मिल रहा। भाई तू खुद पड़ोती हो गया तो हम क्या करें। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं मिर्जा साहब, श्रेया साहब, सीन पता क्या चलता है। देखो ये नसीब है और जो आपके नसीब में लिखी हुई है ना वो आपको मिलेगी। उसका रिश्ता जो है ना कहीं से घूम फिर कर आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए ना, कम से कम आपके घर वाले कोशिश कर रहे हैं, आप भी मना नहीं कर रहे, चलो जी देखो जी कोई मिल जाए जी तो ठीक है, सही है ना। यहाँ पर तो इरफान मेमन बैठा घर वाले पीछे पड़े, मैंने नहीं करनी, मैं नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, थोड़ी दिन बात करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, गाड़ी ले लू। मैं अगर रिक्शा ले ले भाई गाड़ी ले नहीं दे रहा। और जनाब भाई हमें अभी तक बताया नहीं फरीन ने, भाई फरीन बताएं आप सुन लेंगे तो हम गाना चला रहे हैं आपके। चलिए अभी आपके लिए गाना ही नहीं चलाएंगे, हम किसी और के लिए चला लेंगे। और ये ट्रैक हम चलाएंगे जनाब हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे से अयूब लाला जो है ना, अयूब लाला ने कहा है कि भाई हिना खान को और हिना गुल को और सबा गुल को गाना डेडिकेट कीजिए ताकि जीबीएन खुश हो जाए। तो भाई आपके लिए ये गाना है अयूब आफरीदी की जानिब से, जरा सुनिए और बताइए कैसा लगा।

Welcome back! और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ट्रैक पसंद आया होगा। ये जो है कार्य का सुरूर है, ब्यूटीफुल ट्रैक। और जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप रोज कहते हो एंड ए सुनो स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है। 3 बजे तक और 3 बजे तक ये हुई लागुल्ला जारी और सारी है। कराची में हुई है बारिश कुछ देर के लिए और जाहिर है इसी हवाले से कुछ प्यारे प्यारे से ट्रैक, मेलो मेलो से ट्रैक आपको सुना है। सवाल जो मैंने आपसे किया है वो सवाल एक बार फिर दोहराता है। सवाल ये किया है कि जनाब सिटी ऑफ लव यानी कि मोहब्बत का शहर किसको कहते हैं, कौन से शहर को कहते हैं, ये आपने बताया है। और इस वक्त मैं फेसबुक पर लाइव भी आ गया हूँ, हैं जी ते हैं जी। तो लिहाजा मैसेंजर पर जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि फौरन से पेशतर मुझे देख भी लें और मैसेज भी कर दें, यानी कि समझ रहे ना मिर्जा साहब, तुसी भी मेरी प्यारी सी बहन फैसला बात तो बैठी है वो भी देख ले और नाल नाल और जितने भी हैं मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर दुबई वाले भी देख सकते हैं जनाब, यानी कि समझ रहे ना। हाँ, तो रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने बोला चलो थोड़ी देर के लिए लाइव भी आ जाते हैं और सवाल भी मैंने आपको बता दिया। मैसेजेस कर रहे हैं आपके, चाहे स्पेस आपको नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। और अब जनाब आपके मैसेजेस की जरूरत चलते हैं और यहां पर अभी तक कोई आया नहीं यार, की गल है, सब खैरियत है ना। और मानव का मैसेज हो गया था, बर्थडे का मैसेज हो गया था और माशाल्लाह से आज के सारे सॉन्ग अच्छे हैं भाई और शो तो सुपर है। मेरे प्यारे से शुरुआत बोला जरूर कह रहे हैं, वादा शुक्रिया। अयो बापरीदी कह रहे हैं जिगर थैंक यू सॉन्ग जबरदस्त गुड सॉन्ग निदास्यो का मेरा भी आ जाए यार, लाइव आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए। और थैंक्स लाला नदीम भाई, सॉन्ग अच्छा था ये वो बात। और अमीन कह रहे हैं सवागुल से पेट्रोल का और हिनागुल से माचिस का काम ले रहे हैं। सलामून लाला सवागुल हिनागुल था दास काना डेरा मनाना डेरा मनाना उनकी जानिब से कह रहा हूं। और अभी ये मैसेज चल रहा है, थैंक यू तो चल रहे हैं लाला आगे भाई। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं माय नेम इज आयशा। अच्छा अब्दुल्ला की आईडी है आयशा, कैसी हैं आप? ओके ठीक हैं, ठीक ठाक। और लॉरिन तौसीफ भी आ गई मेरी प्यारी सी बहन, कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, हैं जी ते हैं जी। कैमरा सीधा कर लीजिए जरा, सीधा ही बंदा पिया है, हो गया उन्होंने। अच्छा भाई आयशा कह रही है आई एम मैरिड वुमन, दैट्स ग्रेट, ये तो अच्छी बात है। कोई मतलब मॉडल शॉडल भी है आपके? शादी के बाद मॉडल आते हैं ना। फ्रॉम गुजर खान अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, मिर्जा साहब ये आगन है। और इरफान अहमद कह रहे हैं सोने ना गल, तो इस तरह तो होता है इस तरह के काम। आशा करिए जी, तो कितने मॉडल हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी बताइएगा। कौन से साल का मॉडल है आपका? जिंदगी कैसी गुजर रही है आयशा? ओके ठीक गुजर रही है। हस्बैंड कैसे हैं आपके? आपने शादी का बताया तो मैं जाहिर सवाल से जवाब तो करूंगा ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों दास फिरते हैं शादी में। और माशाल्लाह सैयद अब्दुल्ला साहब, और अब्दुल्ला साहब की आईडी से उनकी जो मिसेज अब्दुल्ला जो है वो बात कर रही है। शुक्रिया शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम अमीन को कह रहे हैं सबागुल, और जिंदगी साथ है और आपकी आवाज का इंतजार है। मैं लाइव आ गया हूँ, मेरी बेसुरी आवाज सब सुनेंगे तो कहेंगे यार बस कर दे। अयुबा प्रीति लाल लख रहा जी का शाला नजर बात से बच्चा ही यार। मिसेज अब्दुल्ला कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मिसेस अब्दुल्ला आप फर्स्ट टाइम सुन रही और देख रही या पहले ये आप काम कर चुकी हैं, ये जरूर बताइएगा। अच्छा अब जी गाने की फरमाइश आ रही है तो हूं मैं की करें यार, कितना गाने सुना मुझे समझ ही नहीं आ रही यार। आमर पटेल साहब क्या हाल है आपके, लाहौर तो सब ठीक ठाक है ना जनाब?
अच्छा भाई, जिंदगी आपको जो मैं गाना सुना रहा हूँ ना, इस गाने की जो लिरिक्स हैं, इसको अपने जहन पर नहीं लीजिएगा कि मैं शायद आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, जिंदगी कहनी आज का शो जबरदस्त है, हाल जी ना करें रैकिंग। और नो मॉडल ऑफ माई लाइफ, इंशाल्लाह ये मॉडल आप बेफिक्र हैं, 2026-27 में कोई ना कोई मॉडल आ जाएगा बेफिक्र हैं। और वालेकुम असलाम अमीन भाई, ये दोबारा से मैसेज कर दिया भाई साहब। और जो जिंदगी को मैं ये बात बता रहा था कि मैं गाना जो डेडिकेट कर रहा हूँ ये आपकी जानिब से अपनी आवाज में ऐसे सुना रहा हूँ, तो इस कहने का मकसद ये है कि इस गाने को ये नहीं समझिएगा ना कि यार ये इतना उदासी वाला गाना, अभी तो कोई गाने ही मेलो चल रहा है ना, सो दैट्स वाई ये गाना चल रहा है। तो जहां अब गाने की जानिब बढ़े, मैं बस एक अस्तारी ते अंतरा सुनाऊंगा, पूरा गाना शायद मैं ना सुना सकूं। तो जनाब गाना

वेलकम बैक आएंगे सुने हूं। बस बहुत गालियां भाई, बेसुरा गालियां मैंने, जैसा भी है लेकिन आप लोगों की तारीफें आ रही है। अच्छा भाई, जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे फेसबुक पर, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा मैसेज करें, मैंने आप लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़े। दुबई वाले भी आ गए हैं भाई, क्या बात है, आपको गाना डेडिकेट करना था भाई हमने, तो अब आप आए हैं तो करेंगे। नदीम भाई तुसी पक्के सिंगर हो, कसमें नहा करो यार, ऐवी गा लेता कसमें। अच्छा ये आवाज की तारीफें आना शुरू हो गई, इरफान बोमन भी तारीफ करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिंदगी आपको कैसा लगा ये बताइएगा। योर वॉइस इज वेरी नाइस, मिसेस अब्दुल्ला कह रही है थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। मैं सो जा रहा हूँ, ये भी बता के आ रही जीती रहे मुस्कुराती रहे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मिसेस अब्दुल्ला। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। अच्छा वक्त बड़ी तेजी से गुजरे जा रहे हैं, नाव लाए और आपके मैसेजेस भी मैं रीड कर रहा हूं। सवाल मैंने आपसे ये किया है कि बताएंगे आपके मोहब्बत का शहर यानी कि सिटी ऑफ लव कौन से शहर को कहा जाता है, और पाकिस्तान में सिटी ऑफ लव किसको कहते हैं, कौन से शहर को कहते हैं। अच्छा जी गुल साहब आ गए हैं इस्लामाबाद से, ठंड रही है हवाओं के साथ, गुल तेरा रंग चुरा लाए गुलजारों से, अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहे नदीम भाई, मोहब्बत का शहर बिल्कुल सही बताया। इस पर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब भी है, प्यार का पहला शहर भाई, प्यार का पहला सावन तेरे नाम। और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब बहुत बड़ा नाम है, और इस पर मुझे कुछ याद भी आ गया है। इनका एक बहुत ही जबरदस्त इक्तिबास कह लीजिए कि वो मैं आपकी खिदमत में शामिल करूंगा, समातों में रस घोलने के लिए जरूर शामिल करूंगा, लेकिन हाल ही नहीं, थोड़ी देर बाद। इरफान मेमन तुमने पढ़ लिया होगा, गुलसा ने यहां पर लिख दिया, इससे पहले तो जवाब दिया ही था, और बहुत अच्छा सुनाया आपने। जहीन नूर कह रही है जीती रहो मेरी प्यारी सी शहजादी है ना, और महानू कह रही है वाह जीवा बाबू नाइस वॉइस, बाबू आपकी आवाज में पख्तू भी हो जाए तो क्या बात है, बिल्कुल सुनाएंगे पख्तू अभी आपको सुनाएंगे, अभी ये तो अपनी आवाज है ना, इसमें तो कुछ भी गाते रहेगा।

वेलकम बैक कहेंगे। कैसा लगा आपको? नवीन भैना कह रही है नाइस सॉन्ग गुड वॉइस थैंक यू वेरी मच। इरफान भाई कह रहे हैं ओके। अभी मैं आप लोगों का आंसर पढ़ नहीं रहा क्योंकि तकरीबन सब लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया है। हमारी प्यारी सी शहजादी लिसनर अजरा शब्बीर भी आ गई है और अजरा शब्बीर जब आती हैं तो मुझे हमारी प्यारी सी चाची बहुत याद आती हैं। चाची अब आप चाची से मैं फोन पर बात करके फिर आपको खुशखबरी दूंगा कि वो कब आ रही हैं। वेरी एनर्जेटिक एंड फ्रेश फ्रॉम गार्डन यू आर वेरी नाइस वेरी गुड। अल्लाह सलामत रखे बी हैप्पी ऑलवेज आमीन। अच्छा अल्लाह शब्बीर जी को हम गाना जरूर डेडिकेट करेंगे और वो गाना होगा हमारी प्यारी सी चाची की जानिब से। नवान करें अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई सो स्वीट वॉइस सुने हो थैंक यू वेरी मच। और आई एम वॉचिंग नदीम भाई बड़ी अच्छी बात है भाई आप वॉचिंग कर रहे हैं यानी कि समझ रहे हैं ना आप भाई। दुबई से सुना जा रहा है और दुबई वालों को हमने गाना भी डेडिकेट करना है। फरहीन दुबई से हमें सुन रही है तो फरहीन आपके लिए गाना ये यहां नहीं आपको सुनने को मिलेगा ये आपको रेडियो में ही सुनने को मिलेगा इंटरनेट पर ही सुनने को मिलेगा। तो ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर फरहीन एलो फड़ो

0: वेलकम बैक एंड आई होप के फरीन आपको ट्रैक पसंद आया होगा। वकीत साहब आए हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमारे अदनान भाई भी आए हुए हैं, हमारे पीटीवी के वाले दोस्त, थैंक यू वेरी मच। और नौरीन ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, पाकिस्तान में मोहब्बत का शहर यानी सिटी ऑफ लव किसको, कौन से शहर को कहा जाता है, और उसकी वजह भी इन्होंने थोड़ी बहुत बताई है और ये वाकई दुरुस्त बात है। बस अभी समझिए कि एक दो मिनट के अंदर मैं आप लोगों को जवाब भी दूंगा इसका। मानूर करी आप तो कमाल हो भाई, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन, और बहुत अच्छा गाया आपने सॉन्ग पश्तो, अच्छा लगा। सवागुल कह रही है सो स्वीट, पश्तो गाना अच्छा गाया भाई, पश्तो गाने की भी तारीफें आ रही हैं।
1: अरे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में।
0: अच्छा जनाब, मैंने सवाल जो किया था उसकी जानिब आ जाते हैं। सवाल मैंने ये कहा किया था आपसे क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है तो लिहाजा जवाब भी दे देना चाहिए अभी कि मैं भूल नहीं ना जाऊं। तो सवाल मैंने आपसे ये किया था, सिटी ऑफ लव यानी कि मोहब्बत का शहर किसको कहते हैं, तो मोहब्बत का शहर आप सबने दुरुस्त जवाब दिया, पेरिस को मोहब्बत का शहर कहा जाता है, और पेरिस जो है वो फ्रांस में है, और पेरिस को मोहब्बत के शहर के हवाले से हमारे प्यारे से हमीद गुल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मुस्तनसर हुसैन तारट साहब ने इस हवाले से एक किताब में भी किताब भी लिखी है मोहब्बत के शहर के हवाले से। और वाटर कूलर मिलेगा सोनियों राइट आंसर पर, अरे वो तो हमीद गुल साहब का आंसर देखने के बाद इरफान मेमन आपने आंसर दिया, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। खैर जी, पेरिस को मोहब्बत का शहर सिटी ऑफ लव क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि वहां का माहौल इतना खूबसूरत है, और पेरिस वैसे भी खुशबुओं का शहर पेरिस को कहा जाता है, और वहां के माहौल में मोहब्बत छलकती है।

beautiful track and I hope you like it. Aye, aye. हाँ हम हैं तुम्हारे मुर्तजा खबाश का ट्रैक है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अहमद नवाज का नहीं तो कोई और एक श्रैकी गाना चला दें। थैंक यू वकील साहब, आज तो नहीं चलेगा, आज तो रिक्वेस्ट का सीन है ही नहीं, ऑन ही नहीं है, यानी कि सारे हैं ना। तो आज मेरा ख्याल है कि हमारे प्यारे से लिसनर्स को शो इसीलिए ज्यादा पसंद आ रहा है। माशाल्लाह की तारीफें हमेशा तो आप लोग करते ही हैं, मगर आज की शीट सबको पसंद आ रही है। उसकी वजह यह है कि ये सारा मैंने अपने सर लिया हुआ है, जी सेहरा। और अल्लाह आपको सेहत दे। नदीम भाई नवान साहब कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया यार, जीते रहे, मुस्कुराते रहे, शामिल रहे, आवाज रहे। अमीन कह रहे हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। नदीम भाई सुरमे का टीका तिल मिल लगा रहे हैं आप, लगाया करें जब क्योंकि चुड़ैलें बहुत हैं और जिन भी मौजूद हैं आस पास। अरे नहीं भाई, ये सब मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर, मेरे प्यारे प्यारे से वॉचर्स फेसबुक पर आ रहे हैं। यार ऐसी बात नहीं किया करो यार, ये आप लोगों की मोहब्बत की निगाह है। वैसे एक बात बताऊं आपको, ये बात फैक्ट है कि मोहब्बत की भी नजर होती है। एक तो है नजरे बच्चे बताए, एक होती है और एक मोहब्बत की नजर होती है। आप प्यार से भी किसी को देखते हैं तो अपने इवन अपने बच्चे को भी माँ बाप जब प्यार से ज्यादा प्यार से देखते हैं तो उनको भी नजर लग जाती है। तो ये है, इरफान मेमन कह रहे हैं आज की प्लेलिस्ट अच्छी है। अच्छी थी क्यों भाई, अभी एक गाना और चलाएंगे, बल्कि एक नहीं दो चलाएंगे। आज मैं ज्यादा बातें कम करूंगा और आपको गाने बड़े जबरदस्त से सुना रहा हूं मैं, स्पेशली जब से मैं लाइव आया हुआ हूं। तो अभी आपको एक और बहुत प्यारे से ट्रैक के बारे में बता रहा हूं। डेडिकेशन तो सारी हो चुकी हैं और हमारे गुल साहब इस वक्त सुन रहे हैं, हमारे मिर्जा शुजात साहब सुन रहे हैं, क्या नाम है, और उसके अलावा वकील साहब आ गए हैं और आयशा जो है मिसेज अब्दुल्ला वो जा चुकी हैं और हमारे हमारे हमारे हमारे प्यारे से पीटीवी से सारे भी सुन रहे हैं, जिन्होंने एक्सप्लेन कर दिया जो मैं पीटीवी में चाचा क्यों कहा जाता था। तो आप सबको एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक डेडिकेट कर रहा हूं। शजीर फखर एक बैंड होता था और उनका एक गाना मैं पहले भी चलाता था। कासिम सैफ साहब कह रहे हैं चार्ली का सलाम। ओ हो, चार्ली अमीन वाले हमारे अमीन भाई हैं, अमीन चार्ली, बताइएगा जरूर। और अभी हम आपको जिस ट्रैक की जानिब लेके जा रहे हैं जनाब, ये ट्रैक मैंने जो सब नाम लिए हैं उन सबको डेडिकेट कर रहा हूं। ब्यूटीफुल ट्रैक है, मुझे बहुत पसंद है शजीर फखर का और आई होप कि आपको भी पसंद आएगा।

क्या बात है जनाब शेर फखर, गाना साथ साथ चल रहा है, बातें भी करूंगा क्योंकि हमारे प्यारे से एजाज भाई द ग्रेट इस वक्त सुन रहे हैं। एजाज भाई मैं इस वक्त फेसबुक पर लाइव, जिसकी वजह से मैं अपने प्यारे से शहजादे भाई की कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा, लेकिन आप क्योंकि सुन रहे होंगे तो इस वजह से, तो इजाज भाई के हवाले से मेरे शो में माशाल्लाह से एज अ गेस्ट आ चुके हैं और अयाज अहमद के शो में भी आ चुके हैं। खूबसूरत सी आवाज आपने सुनी है, अब तो गाते भी बहुत आ रहा है भाई। भाई कोई पूरा पूरा गाना अपना बना लें इजाज भाई, ताकि हम अपने शो में जब दिल चाहे आपको याद करें तो वो चला लिया करें। वकीत क्या कह रहे हैं भाई, क्या आप कभी मुल्तान आए हैं, मतलब किसी दोस्त के पास? यार वकीत भाई हमारा बहुत ही शहजादा दोस्त, प्यारा दोस्त, छोटे भाई की तरह गयास वहां पर रहता है। उसने कई दफा कहा कि आ जाओ नदीम भाई, मगर नहीं आ सके हम। कभी आया तो वकीत भाई आपसे भी मुलाकात करेंगे।